0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technology.

0: Well, if you see down the line, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, we're almost twice the population of the United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti, kapra, makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, go in deep dive into each of those aspects.
1: Absolutely. Mr. Tandon.
2: Modi sarkar ne jo sudhar karyakram liye pichle 12 saal mein, usme jo madhyam varg ki arthik utthan mein bahut mahatvapurna bhumika nibhai hai. Tax mein chhoot, GST ka saralikaran, digital kranti, housing subsidy, jaise bade sudharon se madhyam varg ki bachat badhi hai, unke paas jo disposable income badhi hai, और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है. अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की, तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत. तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया.
1: जैसे भी शरद जी ने
2: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया. क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है. और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है.
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 क्रोर पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास. हाउ बिग एन अचीवमेंट do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
0: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than, Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. We've changed the definition, because poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition. कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट. जंगल में और खेतों में जाके टॉयलेट का इस्तेमाल करना, या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत. सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट. सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड, अनुभव, from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
0: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, the whole sanitation program which has been done. Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an

0: dinar may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pachaya aur middle class to usme aati aati kyunki isse naukriyan bani hain, isse logo ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge ke mujhse jab log poochte hain kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaye ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead. Aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha, bhai ye to mera haq hai wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya hai, which I am sure the listeners of Akashvani would like to dwell upon and deep dive, is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो. इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके PLI योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी.
2: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभा. देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा, वो तो सरकार उतनी देगी. आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं.
1: बिल्कुल.
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबडी इन द कंट्री. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट. टूडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इमेमोरियल. सो वॉट इज न्यू? येस, देयर वाज समथिंग न्यू, बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस्ड ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड. A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government.

0: who were both earning. One was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they saved tax about a lakh of rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And, you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
1: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
0: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
1: Financial inclusion?
0: Absolutely. You know, Jan Dhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational. And lot of countries around the world now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch
2: kehna chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Jan Dhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज, आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड, इट्स प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. ए प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
1: जो पिछले 12 सालों में काम किया
0: है, उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनी वेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव, हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं. और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम

0: योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है सड़क
1: जी
0: पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है।
1: जी
0: तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं, और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
1: We have seen in the last 12 years, since 2014, when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours an Uber for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years. I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगी बैठूंगा. आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा. अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे. आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है. आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल. द थिंग्स वी यूज टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कम्फर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री.
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
0: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं. ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है. अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में, केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं. अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है. इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है.
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं, उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड, अनुभव, रिलेट्स टू विकसित भारत 2047. और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी, तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क

0: बनने से। और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो। मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था। क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashokji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har varg ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं। और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग। एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाए तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी, पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं

0: तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है। और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास, वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है, उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on Air. This program is also available on our YouTube channel News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങൾ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പരിപാടിയുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് കേട്ടത്.
5: ആകാശവാണി 102.7 മഞ്ചേരി FM മലയാളത്തിന്റെ ഹൃദയ താളം. സമയം 3 മണി കഴിഞ്ഞ് 35 മിനിറ്റ് 15 സെക്കൻഡ്.

में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। महादेव जी जब गांधी जी से इतने लोग मिलने आते थे तो वे कोने में बैठते थे और जितने लोग गांधी जी से बात करते थे ना वो सारी बातचीत उसको शॉर्ट हैंड में लिख लेते थे। बड़ा बड़ा तो नहीं लिख सकते ना, वर्ड टू वर्ड ही लिख सकते, उसको शॉर्ट करके लिख लेते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उनमें कुछ भूले या कमियां खमियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या तो नोट बही में मजाल है कि कौमा मात्र की भी भूल हो जाए। मगर ये जो महादेव जी अपनी डायरी में गांधी जी के साथ जितने लोग बातचीत करते थे उसको इतनी अच्छी तरह से लिखते थे कि उसमें एक कॉमा की भी मिस्टेक नहीं होती थी। ये सब गांधी जी देखते थे कि महादेव जी का काम देखो कितना अच्छा काम, विदाउट एनी एरर।

0: महादेव जी का काम देखो कितना अच्छा काम, विदाउट एनी एरर्स, ठीक है। गांधी जी कहते महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। दांतों तले उंगली दबाना मतलब ये एक मुहावरा है, आश्चर्यचकित रह जाना। और उसके बाद महात्मा गांधी जी बोलते थे, अरे आप लोगों की तो ये मिस्टेक है, आप लोग ने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, आप जाकर उनसे देखिए, महादेव जी के पास भी अपना खुद का नोट्स है, आप जाओ और अपना लिखा हुआ उनसे मिलाओ। और तब लोगों को आश्चर्य होता था, हे भगवान, एक भी मिस्टेक नहीं। इसलिए आश्चर्यचकित सब लोग। इसीलिए महादेव जी क्या बोलते थे सबको, आप जाओ, आपने जो लिखा है सबसे पहले महादेव जी के पास करेक्शन कर लेकर आओ। तब महादेव जी उनको बताते, हाँ आपने ये गलती की, आपने ये गलती की। इतना समझ आया?
1: समझ
0: हाँ।
1: में आया।
0: लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। लुई फिशर और गुंथर, ये कौन है? ये दोनों विद्वान है, दोनों धुरंधर लेखक थे उस जमाने के। धुरंधर मतलब बहुत अच्छे, जिनका कोई सानी नहीं, जिनके कंपटीशन में कोई नहीं। ये दोनों क्या करते थे, वो भी अपने जो शॉर्ट नोट्स लिखते थे ना, टिप्पणियों को लिखते थे ना, महादेव जो भी लिखते थे उनको देखते थे और देखने के बाद सुधार करते थे, और सुधार करने के बाद ही वो गांधी जी के पास लेकर जाते थे बिना करेक्शन किए। महादेव जी कितना अच्छा काम करते थे, ठीक है, समझ आया? तो इसलिए मैंने कहा कि आप भी काम करो, आपके पास जो भी काम है आप उसमें से काम करो, और महादेव जी की तरह बिना किसी गलती के काम करो, ठीक है। आगे चलें?
1: हाँ,
0: चलें। अब आगे चलें। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान, गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गोद के बने हैं। ओके, बिहार और उत्तर प्रदेश में ना बहुत लंबे लंबे मैदान है, मालूम है आपको? आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो, आपको मालूम होना चाहिए है ना कि बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या है, बड़े बड़े मैदान है ना, मैदानी इलाका है। यमुना की नदी है, यमुना नदी है, ओके, और सोने की कीमती वाले गोंद हैं। यहाँ जो जितनी भी फसलें होती हैं, यहाँ पर जितनी भी खेती होती है, जितनी भी कृषि होती है, वो एकदम सोने के समान होती है, मालूम है आपको? बिहार में और उत्तर प्रदेश में आप सौ को चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, आप दूर दूर चलते जाइए, आपको एक पत्थर नहीं मिलेगा वहां पर, बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों में, ठीक है। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुपती नहीं थी। इसी तरह जो लोग महादेव देसाई जी के कांटेक्ट में आते थे, उनको कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। ओके, क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। कौन?
1: महादेव की।
0: हाँ, महादेव देसाई जी। ओके, उनकी निर्मल प्रतिभा, उनके संपर्क में उनकी निर्मल प्रतिभा, प्रतिभा मतलब टैलेंट, उनके अंदर जितना भी साफ स्वच्छ, जितना भी जो भी टैलेंट था, जो भी प्रतिभा थी, किनके अंदर?
1: महादेव।
0: हाँ, महादेव जी। उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधो नहला देती थी। तो उनके अंदर जितने संस्कार थे, उनके उन संस्कारों की जो प्रेरणा थी, उन संस्कारों की जो चमक थी, उनके कॉन्टेक्ट में आने वाले व्यक्तियों के पर्सनैलिटीज में भी हम देख सकते हैं। तो इतना अच्छा व्यक्तित्व था उनका, महादेव देसाई जी की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, जो लोग भी उनके संपर्क में आते थे वो भी महादेव जी के समान ही बन जाते थे। ओके, समझ में आया? उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक नहीं उतरता था, और लोग उनसे इतने आकर्षित थे, लोग उनकी कार्यशैली से इतने अट्रैक्ट थे कि वो बाद में भी जाकर, ओके, बहुत बहुत दिन बीतने के बाद भी वो महादेव देसाई जी की कार्यशैली, मतलब उनके काम करने का स्टाइल को भूल नहीं पाते थे। तो उनका काम करने का स्टाइल इतना अच्छा था, उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि लोग उनकी चमक में खो जाते थे, और क्या सोचते थे कि हमें भी महादेव देसाई जी के समान काम करना है, हमें भी वही स्टाइल अपनाना है जो महादेव जी अपने काम में अपनाते। आप लोग अपनाओगे ऐसे ही?
1: हाँ।
0: महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। महादेव जी और गांधी जी दोनों एक दूसरे के पूरक थे। महादेव के बिना गांधी जी का काम नहीं चल सकता, और गांधी जी के बिना महादेव जी का काम नहीं चल सकता, इसलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच

0: केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। गांधी जी को सबके साथ बात करना है, सभी की बात सुननी है, सभी के साथ चर्चा करना है, इसलिए साहित्य के ऊपर लिखने के लिए, लिटरेचर पर लिखने के लिए उनको कभी टाइम नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, राइट? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग,
1: माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ।
0: हाँ, ये गांधी जी की क्या है?
1: आत्मकथा।
0: आत्मकथा। इसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी किसने किया?
1: महादेव
0: देसाई जी ने किया। ओके, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की, तो इसका मतलब क्या हुआ? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये क्या है? गुजराती में लिखा गया है, ठीक है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने किया? महादेव देसाई जी ने किया, ठीक है। समझ में आया? तो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा, और ये माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये अखबार में पब्लिश होने लगा। कौन से अखबार में? नवजीवन में और यंग इंडिया में भी, दोनों में। बाद में पुस्तक के रूप में इसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके, और बाद में इस आत्मकथा को पुस्तक का रूप दिया गया, और ये पुस्तक गांधी जी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग बहुत ही फेमस हुई, बहुत ही प्रसिद्ध हुई, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। इतना समझ में आया?
1: हाँ, आगे चले।
0: अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। एक बार किसके जमाने की बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है? 1934-35 की बात हो रही है। एक बार गांधी जी वर्धा कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। वर्धा में क्या है? एक महिला आश्रम है, और महिला आश्रम में मगनवाड़ी में रहने के बाद, वहाँ एक छोटा सा गांव है मगनवाड़ी, गांधी जी वहाँ पर रहे, और उसके बाद मगनवाड़ी से चलकर वो एक बार क्या हुआ, सेगांव की एक सीमा पर पहुँचे, दूसरे गांव की एक बॉर्डर के पास पहुँचे, वहाँ पर जाकर बैठ गए। उसके बाद वहाँ पर एक दो झोंपड़े बने, और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए, और जहाँ पर गांधी जी बैठे सेगांव पर, वहाँ पर कुछ दिनों के बाद झोंपड़ा बनना शुरू किया। उसके बाद झोंपड़ी मतलब हट, उसके बाद लोगों ने वहाँ पर क्या किया, लोगों ने बड़े बड़े मकान भी बना लिए। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे, और तब तक महादेव भाई कहाँ पर रहे? दुर्गा बहन और नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे, जब तक गांधी जी सेगांव में थे। वहीं से वे वर्धा की असह गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे, और मगनवाड़ी से लेकर सेवाग्राम आश्रम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है बच्चों, मगर वो फिर भी पैदल चलकर उस आश्रम में आते थे। ये दूर था, और जो वर्धा में जो गर्मी पड़ती है वो बहुत बहुत कड़क गर्मी पड़ती है, मगर उस कड़क गर्मी में भी महादेव देसाई जी पैदल चलकर आते थे, ठीक है, गांधी जी से मिलने के लिए, और दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल जाते थे। पूरे 11 मील वापस जाना और 11 मील चलकर आना, कितना हुआ 11 + 11?
1: 22 मील,
0: 22 मील वो रोज चलते थे। हम लोग चल सकते हैं आजकल? 22 मील वो रोज चलकर आते थे, जाते थे। चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज, एक अच्छा अभ्यास है, हमें भी चलना चाहिए, ठीक है। तो रोज रोज का ये सिलसिला लंबे समय तक चला, रोज रोज 22 मील चलना, बहुत लंबे समय तक वो चलकर जाते रहे, चलकर आते रहे, काम करते रहे, और कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में एक कारण माना जा सकता है। और अकाल मृत्यु का क्या कारण बताया गया? अकाल मृत्यु का ये कारण बताया गया कि ये 22 किलोमीटर रोज चलते थे, ऐसा बोलते हैं। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना रहा, और गांधी जी इस मौत के प्रभाव को सहन नहीं कर सके। महादेव जी के बिना गांधी जी कुछ नहीं कर सकते, तो गांधी जी के ऊपर बहुत खराब असर पड़ा। जब महादेव जी की मृत्यु हुई तो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरा जो राइट हैंड है वो, मेरा जो दायां हाथ है वही कट गया। उनको बहुत दुख हुआ उन्हें, और वे भर्तृहरि के भजन की ये पंक्ति हमेशा दोहराते रहते थे, और वो हमेशा, भर्तृहरि नाम के एक लेखक ने एक भजन लिखा है, उस भजन की पंक्तियों को गांधी जी हमेशा बोलते रहते थे। क्या था वो भजन? ए रे जखम जोगे नहीं जशे, ये घाव कभी योग से नहीं भरेगा। महादेव जी की जो मृत्यु हुई है, ये जो घाव है मेरे दिल के ऊपर, ये घाव मेरी मृत्यु तक कभी नहीं भरेगा। बाद के सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता तो गांधी जी उनको बुलाते, उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। बाद में धीरे धीरे महादेव जी की जगह प्यारे लाल जी ने ले ली, गांधी जी के निजी सचिव प्यारे लाल जी बन गए, मगर बाद में

0: कभी कभी वो क्या करते थे, प्यारे लाल जी को प्यारे लाल लड़कर नहीं बुलाते थे, महादेव जी कहकर बुलाते थे। ठीक है, इतना समझ में आया?
1: हाँ।
0: तो बच्चों ये है लेसन, ये इसका गुजराती से अनुवाद किया गया और अनुवादक का नाम है श्री काशीनाथ त्रिवेदी। हम आपको और कुछ बताते हैं महादेव जी के बारे में। अच्छा तो एक या दो लाइन पढ़ो जरा मंगलेश।
1: साहित्य पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्मा राजनीति प्रवाहों और चढ़ावों से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे।
0: ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। साहित्यिक पुस्तक की तरह महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाले, अद्यतन मतलब आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न। ये बात नहीं है कि महादेव जी सिर्फ पुरानी ही किताबें पढ़ते थे, वो मॉडर्न इंडिया में जितनी भी किताबें थे वो भी पढ़ते थे। वो उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, है ना? तो इसके बाद, आजाद ना होने के बाद भी उस समय भी बहुत सारी घटनाएं होती थी, मॉडर्न इंडिया था ना वो भी। तो मॉडर्न इंडिया में जो भी घट रहा है, मॉडर्न इंडिया में जो भी इंसिडेंट्स हो रहा है, उसके बारे में भी वो जानकारी रखते थे। कौन? महादेव देसाई जी। देखा, तो हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। हिंदुस्तान में क्या घट रहा है उस समय, भारत में क्या क्या घट रहा है, नई से नई जानकारी भी महादेव जी के पास रहती थी। ओके, हिंदुस्तान से संबंधित कोई भी समसामयिक खबर उनसे पूछ लीजिए, वो उस रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर भी उनके पास क्या था, उनके पास उनके विचार रहते थे, है ना? हमको पॉजिटिव रहना है, हमको आजकल रीडिंग का बहुत महत्व है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है।
1: धन्यवाद अध्यापिका जी।
2: ഹിന്ദി പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് അധ്യാപിക അനുപം രശ്മി, പഠിച്ചത് ഇഷ എസ് നായർ, അഖിലേഷ് എന്നിവർ. ഹിന്ദി പാഠം സമാപിച്ചു. ആകാശവാണി.
3: തുടിതാളം തായമ്പക, അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയഴീക്കൽ വിനുവും സംഘവും.

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇനി 9:30 കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ സമയം 8 കഴിഞ്ഞ 44:54. ഇനി സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: നമസ്കാര. ആകാശവാണി സേ സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത് മേ വിശാൽ ശർമ്മ. മുഖ്യ സമാചാർ. भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की. गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा. अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी. पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च. मानसून ने दी केरलम में दस्तक. केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 तक मूसलाधार बारिश का अनुमान. और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची. प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था.
2: The discussions also.
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई. चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें.
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है. पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है. बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है. उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया. इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है. इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है. श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी.
4: हमारे देश से करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है. अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा. हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है.
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in।

0: या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
3: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश

0: സമയം 9 മണി കഴിഞ്ഞ് 59 മിനിറ്റും 54 സെക്കൻഡും. ഇനി ദേശീയ പ്രാദേശിക നാടോടി ലളിത സംഗീത പരിപാടി കേൾക്കാം. ഡൽഹി റിലേ.
1: ये आकाशवाणी है. आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा. सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं. वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका

0: हैं जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: वी जस्ट हर्ड अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड चानन भेल। कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोग्राम शी नाउ प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: दैट वॉज अ मैथिली कॉम्पोजिशन परफॉर्म्ड बाय सौम्या मिश्रा। शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन विद अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं मैं अमीना हुसैन। नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय।

श्री विजय कुमार सामंतराय, माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बैला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है, मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरु नाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।